0: सुंदर सोने साध संगत जन बहने वाहो वाहो करे सी जन
1: सोहने
0: सोने तिन को परजा पूजन
1: आई।
0: जेड़ा भी गुरु ग्रंथ साहब दी हजूरी च बह के वाहगुरु दे सिमरन नाल जुड़दा है महाराज आंदे मेनू बड़ा सोहना लगता है। जेड़ा फिर गुरु साहब नू सोहना लगन लापन ओहदा लोग फिर सत्कार मान करदे आ। बहुत वड्डी बरकत है वाहगुरु गुरमंत्र दे सिमरन दे विच

करके लाह प्राप्त करिया करो। ये जरूरी है, परमेश्वर जी ने कृपा कीती है कई युग तप करके ते फिर आपां नूं वाहिगुरु गुरमंत्र दी दात दित्ती है ते वाहिगुरु दा सिमरन आपां ने झोली पाया है। जदों भी समां मिले, जदों भी गुरु घर विच आओ, वाहिगुरु दे सिमरन नाल जुड़ो। उठदियां बहिंदियां तुरदियां फिरदियां जदों भी समां मिले वाहिगुरु दे सिमरन नाल जुड़िया करो। सारियां तों उत्तम सब तों वधिया कारज इह है, लोक परलोक सहेले हुंदे ने तां ही गुरु रामदास पातशाह कहिंदे आ गुर सतगुर का जो

जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निद आवै ताए। सब थाई होए सहाए। दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सब थाई होए सहाय। दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप। जुगो जुग अटल धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे पाठ। दर्शन दीदार जी का त्यांतर के बोलो जी। पंज प्यारे चार साहिब जादे चाली मुक्ते समूह संगतां।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवी प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिय कर नौ निद आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होए सहाय दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप जुगो जुग अटल धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान तर के बोलो जी। हे अकाल पुरख वाहिगुरु अंतरयामी सतगुरु धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ओ महाराज दीवाना दी समाप्ति तो उपरंत आप जिया दे पावन पवित्र स्वरूपां दे बस्तरां दी सेवा ते कीर्तन सोहिला साहिब जी दे पाठ होए हन गुरबाणी दे जाप करदिआं सेवावां निभाउंदिआं होईआं सरबत भुल्लां दी कृपा करके खिमा बख्शिश करनी। चार पहर दिन आप जी दे भाणे अंदर सुखालत दा बतीत होया है चार पहर रहण आई है कृपा करनी गरीब निवाज आप जिया दी याद विच ही बतीत हो जावे अमृत वेले तक शरीर विच स्वास रहे ता अमृत वेला बख्शिश करके निवाजना दर्शन इशनान सेवा सिमरन दी दात बख्शिश करनी सतगुरु जीओ कृपा करो सुखासन सेवा करन दी आग्या होवे समूह संगतां नूं खुशियां बख्शो सेई प्यारियां दे दर्शन दीदार मिले बख्शणे जिना मिलिया आप जी का ही नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणी सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोले सो निहाल।

आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया शब्दो ता गाव हो हरि केरा मन जिनि वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनहु विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले

अंतर्गत होके सत्संग जी अपने दो तीन मिनट वास्ते नाम सुनना करना जीओ। जिन्ना गुरमुखां दे शब्द चलदे आ उन्होंने शब्दों विच भी ध्यान रखना जीओ। जिन्ना गुरमुखां नूं नाम नहीं सुनदा जे उन्होंने सास ग्रास सिमरन विच ध्यान रखना जीओ। कृपा करके नेत्र बंद रखने जीओ। विचारां तों रहित होके आपां ने दो तीन मिनट वास्ते उस अंतरगत परमात्मा दी उस बंदगी विच जुड़ना है जीओ।

संपत्ति सत्कार जोग सर्वत्र ही साध संगत जी बहुत वड्डिया भागां वाले गुरु की अपार बख्शिश प्राप्त है।

की संगत गुरु धन है, गुरु धन है और गुरु की संगत भी धन है। सतगुरां दे दरबार की प्राप्ति होई है, संगत विच सज के अमृत बाणी सरवण करके नाम रस नू प्राप्त कीता है। फिर अर्ज कर दिया धन धन सत संगत जित जिस करके हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास। सब ने नाल होर कृपा कीती जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जी वास। पहला जन्ने बैठे हो गुरु धन गुरु धन गुरु कियां संगतां सज बैठियां ने दूर दरेडे घरां विच भी आनंद माणदियां ने ओ भी भाई धन ने संगत करन दा सुभाग समा मिलदा है। नाम दा रस ज्ञान दा प्रकाश हुंदा है, वड्डियां भागां दी निशानी हुंदी है। पर साहिबां ने नाल कृपा कर दित्ती जो जेड़े जो तो भाव जेड़े सारे थोड़ी है, सारे विच ते आपां वी तुसीं संगत विच सज बैठे हो। जेड़े संगत तो वांझे ने जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस पाया। संगत विच आके नाम रस की प्राप्ति होया करदी है। मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत ते साध संगत पाई परम गते मैले कपरे कहां लग धोवो आवेगी नींद कहां लग सोवो जोई जोई जोरियो सोई सोई फाट्यो झूठे बणज उठ ही गई हट्यो कहो रविदास भयो जब लेखो जोई जोई कीनो सोई सोई देखियो हर स्यों जाए मिलना साध संग रहना सो सुख अंक न मावे जो जन वैरा वाहिगुरु जुगो जुग अटल। जिथे गुरु सवारियां दी संगत हुंदी है उत्थे मेरे वाहिगुरु जी दा वासा होया करदा है। संगत

आओ जपो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। गज के बोलो थोड़ी होर कृपा गज के।

गुर की कार कमाए लाहा कर आणिया गुरबाणी निर्बाण शब्द पछाणिया एक नानक की अरदास जे तुद भावसी मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी। गुरु सवारी संगत जी तुसाने दो मिनट गुरु शब्द जपया है, जेड़े जपदे ने उस वड्याई महिमा नूं आप जानदे ने। गुरु की रहमत वरतदी है संगत विच, इन्नी वड्डी कृपा हुंदी जे किन्नियां प्यार वालियां रूहां बजुर्ग वीर नौजवान मेरिया भैणा मावा बच्चिया बैठिया ने घर बैठ दे ते दो मिनट कल्ले दे दो ही लगने सी, हुण एक एक दे दो दो मिनट ला लो, संगत की गिनती कर लो, घंटिया तो वध्या गुरु गुरु जपया गया है। किन्ने संगत बैठे ने, जे 60 जाने बैठे हुए दो मिनट जपया है 120 मिनट बन गए ना, ते 60 तो गिनती कही है से ज्यादा है, ता संगत की वड्याई है। अखो सतनाम श्री गुरु रहमत करे, रोजाना इदा जुड़े रहो जुड़े रहो, जुड़द्या जुड़द्या ब्रह्म ज्ञान विच गुरु पहुंचावेगा भुलां दीआं माफ़ियां। तुहानू याद है जी सरबत दा सरबत दा सरबत दा नानक नाम तेरे पहाणे सरबत दा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा नंद को अंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया।

आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन काओ सदा नमस्कार। अमृत बाणी दा कीर्तन आप संगतां नूं सरवण करा रहे सन भाई गुरसेव सिंह जी। हजूरी रागी सचखंड श्री दरबार साहब ते उन्हां दा जथा धन धन बाबा फरीद साहब तिन्हां दे याद विच फरीदकोट दीआं संगतां वल्लों शुक्रवार नूं खंड पाठ साहब प्रारंभ होणगे, जिन्हां दे ऐतवार नूं मेन हाल विच भोग पाए जाणगे ते दीवान सज्जणगे। हुण भाई तरलोक सिंह जी पौंटा साहिब वालिआं दे जत्थे पासों गुरबाणी दा कीर्तन सरवण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।

तिल वडियाई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा किया वडियाईया। तुद विण सिद्धि किनै ना पाईया, कर्म मिलै नाही ठाक रहाईया। आखण वाला क्या वेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सवारण हारा।

प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावै सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर।

मैं सुख वासी से मुक्त पए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जिन हर निरभौ त्याया जी तिनका भौ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर

पढ़ै बहु सिमरत शास्त्र जी, कर क्रिया खाट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निःचल करता सोई। तुदे आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करै सोई। तुदे आपे श्रेष्ठ सब उपाई।

गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया, अवर काज तेरा किता न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ। जप तप संज

दुष्ट अरिष्ट टरे तरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मह हरि हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट छा छुए सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा।